0: हमारे गांव में रोड डला है, सरकारी रोड डला, बहुत अच्छा रोड।
1: ये प्रधानमंत्री योजना जो लखपति दीदी है,
0: साइकिल नहीं चला पाते थे, अभी गाड़ियां भी नहीं चलती थी, अब साइकिल हमको मिल गई और सड़क भी बन गए।
2: मोदी वाला सिलेंडर अलग होता है क्या?
3: नहीं, मोदी जब मोदी छिप रहे तो वही मोदी आएगी वही।
4: 70 सालों में किसी ने रेडी वालों के लिए सोचा ही नहीं।
5: प्रधानमंत्री के पैसे से हमारा भविष्य तो बहुत सुरक्षित है।
6: बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया।
7: नमस्कार, मैं हूँ।
8: हेलो, आई एम ब्रिजेश तिवारी। टुडे वी ब्रिंग यू द स्टोरीज ऑफ पीपल हु डिडंट लेट लिमिटेड इनकम होल्ड देम बैक। Rather than making excuses, they worked tirelessly to improve their financial situation and made the most of government initiatives designed to support their growth and success.